0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: फील्ड मार्शल सर आसिम मुडीर ईरान अमरीका अमन मुहिदे के गारन लाए अज तेहरान में ईरानी कैदत से मुलाकातों करें खिते में अमन बेन गारन ते गाल बोल कंदो ईरान आमद के घरू वजीर सिकंदर मोमनी तेहरान एयरपोर्ट ते फील्ड मार्शल सर आसिम मुडीर की आजियां कई घरू वजीर मोहसिन नकवी पिण हवाई अड्डे ते मौजूद हो ISPR मूजिब फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर जो ईरान जो दौरों टाकड़े वाले निगोशिएशन जो हिस्सो है खिते में अमन जो कयाम ए बिन मामलों ते गाल बोल कई वेंदी ज़रीन मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरानी सदर मसूद पेशकियान स्पीकर बाकर कालीबात ए परडेही वजीर अब्बास इराकी से मुलाकातों कर अमन मुहिदे ते गाल बोल कंदो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार राबते में आयो उम्मीद है ईरान से जल्द मुहिदो तय थी वेंदो अमरीका के परडेही वजीर मार्को रूबियो स्वीडन में साफिन से गालाइंदे चो तो तेहरान से मुहिदो न थियो तो प्लान बी भी मौजूद है मुहिदो थियो तो अपने हुरमज खुली वेंदो ईरान से डील असांजी पहरी तरजीह है ईरान अमरीका से मुहिदे लाए हतमी मसूदो तैयार थियण की तस्दीक कर छी यूरेनियम की तकीरें आपने हुरमत वे मामले ते रेड लॉक बरकरार परडेही वजीर अब्बास इराकची है तो अमरीका से गारन में मस्बत अकबराई थी है रुगो यूरेनियम की जखीरे आपने हुरमत वे मामले ते रेड लॉक है मुहिदे जो हतमी मसूदो तैयार कर छो है रुगो ब नुकता रंडक बनल अमरीकी एटमी प्रोग्राम के तकड़ियों गारियों तेहरान 30 डीह एतमाद की बहाली चाहे तो अपने हुरमत में महफूज सफर लाए अथॉरिटी कायम कर छी है
4: कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंगबंदी के लिए अमन कायम करने के लिए तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है उनका मेहनत वजीर आजम साहब का मेहनत उनका पूरा टीम का मेहनत हम इसके शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है
3: वजीर आजम फील्ड मार्शल ईरान जंग के खात्मे लाए कोशिशन में रुधल हैं इसराइल अमरीका जंग की कीमत समूरी दुनिया अदा करे पई दुआगू आयो तो जंग खत्म थिए आवाम जो मुआशी मुश्किलातों घट थन जंग खत्म न थी तो हालतों खराब थन्दू कराची में तकरीब के खिताब कन्दे बिलावल भुट्टो जरदारी है तो अमन लाए कम कंदड़ अल्लाह अल्लाह कम कर रहा है एहसास है तो आवाम मुआशी मुश्किल जो शिकार है आवाम के हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश करूं पा वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के चैन डी के दौरे के पेरे मरेले में हांगड़ो रवानो वजीर आजम हांगड़ो में आजी चांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात कंदो नायब वजीर आजम इसाक डार वफाकी वजीर हसन इकबाल अता तारण खास मामन तारक फातमी आईटी वाले वजीर आशिजा फातमी भी वजीर आजम से गड मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग वजीर आजम से मुलाकात कंदो वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी कंपनियों के सीओ से भी मुलाकात कंदो लाड़काने में टिकटॉकर नारी जो पंजे माओ ते बदपेशो कराण जो इल्जाम एसन कानून की रवासिण टिकटॉकर इकरा उर्फ महक मस्तोई जो मासूम दी समेत एहतजाज नारी चो तो माओ ए मुझे वालिद का तलाक वठण बाद असां के पान सा गड रहायो ए बी शादी कई वेगे पीए भी आई जे नशे में मुसां ज्यादती की कोशिश कई माओ पंजे चाहिंदर सा बदपेशो कराण लाए जोर भरियो इनकार ते उन मुखे मासूम धीअ समेत घर कढी छो अमर चाहिंदड़ सा गड जी मौतमार धमकियों दे रही है ए घोटकी वेझो मजदा कल्टी थियण सबब 15 जणा जख्मी थी पिया घोटकी का कोयटा वेंदड़ पठान ब्रादरी जा माण्हुनि जी मजदा कल्टी थी पई हादसे में ॿारनि ऐं औरतुनि समेत 15 जणा जख्मी थी पिया अठनि जी हालत ॻणती जोगी ॿुधाई पई वञे

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578
3: जी हाँ 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लगातार राबते में आयूं। ईरान से जल्द मुआहदो तय थी वेंदो। अमरीका के परदेही वजीर मार्को रूबियो स्वीडन में सहाफिन से गालाइंदे चयो आहे त तेहरान से मुआहदो न थियो त प्लान बी भी मौजूद आहे, बस खुली वेंदो। ईरान से डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे। नवाज शरीफ चीन के टिन डी सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो। वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम ए बिन सा मुलाकात कंदो। मुलाकात दौरान पाक चीन लागापन समेत खिते ख्याल की डेवट कई वी। मीरपुर मातरोबर से समेजा बिरादरी के विंदड़ में झेड़ो एक जड़ो मारजी पो। गोट मोहम्मद आलम चांडियो में जमीन के मालकिता बिन्हीं धुरन में झेड़ो थो। लठियों सुरटा लगन से अकबर समेजो कतल थी पो। अठ जणा जख्मी थी पाया। मकसूल जो मड़ आए जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धुरन में छिकताण वधी वई। खैबरबर से औरत जो रोड़ी केनाल में लाशत। गोट कुंभवट गोठान औरत जो लाश रुणंदो ऐसी पुलिस के इतला कर। पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मूजिब लाश की सुणप नए थी सी।
1: सोलर बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरिया ए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तुझिया।
1: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: Michael Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पाकिस्तान जो टकरे वाली कोशिशों तेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी पढ़ रही वजीर अब्बास सिराखची से मुलाकात ईरानी मीडिया मौजूद मुलाकात दौरान जंग के खात्मे वारन तजवीजन ते तफसीली गाल बोल कही वही कतरी वफद में तेहरान भी मौजूद ISPR मौजूद फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरों टकरे वाली कोशिश में हिस्सो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर मसूद पश्चान का बाकर कालीबाद बेन से मुलाकातों कद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लगातार राबते में आयो उम्मीद है ईरान से जल्द मुआहदो थी वो अमरीका के परदेही वजीर मार्को रूबियो स्वीडन में सहाफिन से गालाइंदे तेहरान से मुआहदो न थो तो प्लान बी मौजूद है मुआहदो थो तो आमने हुरमस खुली वो ईरान से डील असि पहरी तरजीह है ईरान अमरीका के मुतालबन के अमन गाल में सब का वही रंडक करार दे छो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जो गडियल कौम के सेक्रेटरी जनरल से फोन से राबतो अब्बास इराकची अमरीका माजी में अधूरन वायदन ए फौजी हमलन जरिए सफारतकारी के नुकसान पहुंचाई रो है तेहरान पाकिस्तान के सालसे में अमन गाल में संजीदगी से हिस्सों वी रो है इंटिव गोथरस सफारती अमल जारी रखने जोर भर वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के टिन डी सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम ए बेन से मुलाकातू कलाकात दौरान पाक चीन लागपन समेत खिते सूरत हाल अमुन के क्याम पाकिस्तान के सालसी वाल कोशिशों के ख्याल की डेवट कई वी

0: अमेरिका जे नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गियाबार्ड अहदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर मुक़रर थियल तुलसी गियाबार्ड 3 जून 2026 ते अहदो छॾींदी। अमरीकी मीडिया मूजिबि तुलसी गियाबार्ड ईरान जंग बाबति ट्रंप इंतिज़ामिया खां अलॻि मौक़िफ़ रखंदी हुई। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी सईद मेमन जी अगवा में कराची वासीअ माजिद मुलिस वञण ते शक ज़ाहिर करे छॾियो। डॉक्टर कादर मक्सी केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सईद मेमन जी काज़ियाबी लाइ कोशिशूं वठण जी बुनियादी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत जी आहे। सईद मेमन जो 2 महीना पहिरियां दिल जो बाईपास थियो आहे, संदसि ज़िंदगी ख़तरो आहे। सईद मेमन खे कुझु ॾींहं पहिरियां मुबैना तौर ते बलोचिस्तान मां अगवा कयो वियो आहे। खैरपुर वेझो कोठाणे जो गलो कपियल लाश हथ इतलाह ते पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस मौजूदु मक़तूल मोहम्मद रमज़ान फुलफोटो नेवी में मुलाज़िम आहे। वाक़े बाबति वधीक जांच कयूं पिया। मीरपुर माथिलो परसां समय जा बिरादरी जे बिंदुनि में जहिड़ो हिकु ॼणो मारिजी वियो। घोट मोहम्मद आलम चांडियो में ज़मीन जी मालिकी तां ॿिन्ही धुरियुनि में जहिड़ो थियो। लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सां अकबर समय जो क़तल थी वियो। 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। धुरियुनि में छिकताण वधी वई। ऐं खैबर भरिसां औरत जो रोड़ी केनाल मां लाश हथ ॻोठण जी इतलाह ते पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। सुञाणप न थी सघी।
1: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाई
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252578 6।
6: जी हा, 2315525786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे
3: ईरान या अमरीका में सरचावल है पाकिस्तान जो चाकरे वाली कोशिशों तेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी परदेश वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात ईरानी मीडिया मुजिब मुलाकात दौरान जंग के खात्मे वारन तजवीजन से तफसीली गाल बोल कई वही कतरी वफद ब तेहरान में मौजूद ISPR मौजूद फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरो चाकरे वाली कोशिशों जो हिस्सो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर मसूद पश्चान बाबर बाकर कालीबाद अबियन से मुलाकात कद
4: Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries have interests because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that the film We're in constant communication with
3: Field Marshal Lasar rabte mein aayo ummeed hai Iran sa jald muahido tay thi vendo America ka galainge che to Tehran sa muahido na thyo to plan B maujood hai muahido thyo to ab na hurmus khuli vendo Iran sa deal asan ji pehri tarjeeh aayi ईरान अमरीका के मुतालबन के अमुन गाल में सब का वही रंडक करार डेई छो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची गडल कॉमन सेक्रेटरी जनरल फोन से उन राबो कर अब्बास इराकची तो अमरीका माजी में अधूरन वायदन ए फौजी हमलों जरिए सफारतकारी के नुकसान पहुंचाई रो है तेहरान पाकिस्तान के सालसी में अमुन गाल में संजीदगी से हिस्सों वी रो है इन गोत्रियत सफारती अमल जारी रखने जोर भर वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के टिन डी के सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम ए बेन से मुलाकात कद मुलाकात दौरान पाक चीन लागापन समेत खिते की सूरत हाल ए अमुन के कयाम लाए पाकिस्तान के सालसी वाल कोशिश से ख्याल की डेवट कई वेंदी अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड अहदे त इस्तीफा डेई छी फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर मुकर थियल तुलसी 30 जून 2026 ते अहदो छी थी अमरीकी मीडिया मूजिब तुलसी ईरान जंग बाबत ट्रंप इंतजामिया का अलग मौकफ रखंदी हुई एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मंगसी सईद मेमन के अगवा में कराची वासी अमाद के मुलसण जो शक जाहिर कर छो डॉक्टर कादर मंगसी केटीएन न्यूज से गालंदे चवा सईद मेमन की बाजियाबी ला कोशिशों वन की बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है सईद मेमन जो ब महीना पैर दिल जो बायपास है सन जिंदगी के खतरो है सईद मेमन के कुछ डी पैर मुबैना तौर से बलोचिस्तान में अगवा किया वो है खैरपुर वेझो गोठाने जो अंबन के बाग में गलो कपियल लाश है इतलात पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल पुलिस मौजूद मकतूल मोहम्मद रमजान फुलपोटो नेवी में मुलाजिम है वाकई बाबत जांच करूं पाया मीरपुर माथिलो बरसा समय जा बिरादरी के बिंदर में झेड़ो एक चरों बारजी पो गोठ मोहम्मद आलम चांडियो में जमीन के मालिक तथा झेड़ो थियो लथियों सिरोटा लगन सब अकबर समय जो कतल थी पो अठ जणा जख्मी थी पाया खैबर बरसा औरत जो रोड़ी केनाल में लाश हथ सुप न थी थुरमे वडेरे के पुट तथा कतल थियल नौजवान जनाद नमाज बाद तदफीन मकतूल अजमल उर्फ नोमान मेमण जनाद नमाज गोठ ओदी में अदा कई वही वारसन मूजिब वडेरे के पुट नशे में नौजवान के पैं बंगले से घुराए कतल किया पुलिस वडेरे के पुट खिलाफ कार्रवाई करने लाए तैयार ना है दोदापुर में विरोही बिरादरी मिलंदड़ खूनी तकरार जो जरगो डोही धुर से 90 लख डंड मुकरण गोड बख्शण द्रोही में अब्दुल मालिक द्रोही ए माणिक द्रोही के धुरन महलंदड़ तकरार जरगो थियो। अब्दुल मालिक धुरमत आयकर खून आयकर जख्मी के जख्मी करण जो साबित थियण ते 90 लख दंड मुकरर कयो वियो। 2 साल अग जमीनी तकरार तां झेड़े में पढ़ियल बिरोही कतल थी पियो हो, हिकु जणो जख्मी थियो हो। न्यूसराबाद में 2 साल अग कतल थियल नौजवान बादशाह अपड़े जो कतल जो जरगो थियो। डोह साबित थियण ते जवाबदार धुरमतां 96 लख दंड मुकरर। मोहम्मद खान जुड़े जो सरपंचीअ में गोठ शानाबाद जुड़े जो में जरगो थियो। नौजवान जे कतल जो डोह 3 जणनि ते साबित थियो। जवाबदार यासिर काका, मुश्ताक काका सेंट्रल जेल हैदराबाद में कैद आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576
7: जी हाँ 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

रहे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. बिल्कुल जी, प्रोग्राम है और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स में आप लोगों के व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है. तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे बताइए जल्दी से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का इरादा है आप लोगों का और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे मार्केट तो हम पक्का लेकर आएंगे. और ये भी हमें बताइएगा साथ साथ, जो है ना ईद भाई बिल्कुल करीब आ चुकी है तो ईद की तैयारियां चल रही हैं. बिल्कुल खवातीन जो है वो सफाइयां करने में बड़ा मसरूफ है आजकल. देखा जाए तो लोगों के घरों में बकरी आना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों के घरों में बकरी काफी टाइम पहले आ चुके थे लेकिन कुछ लोगों के घरों में अभी आना जो है ना वो स्टार्ट हो चुके. कुछ लोग ऐसे होते ना जो कहते हैं कि भाई हमसे काम नहीं हुआ जाता और बकरी जो है वो उनकी सफाइयां होती है, उनका बड़ा काम होता है. तो बकरी जो है ना वो थोड़ा वो ईद के कुछ दिन ही बचते हैं तब जाकर वो लेकर आते हैं, बकरा की शॉपिंग करके आते हैं. ये भी जेंसीज की बोलिया. ओके, सो अज जी को माइनस सभी चीजों के ॾिसी करे टॉपिक सोचो आहे. सो टॉपिक अॼु मां आवांगा इहो पुछंदमि त जैसे जैसे भई ईद जा ॾींहं करीब ईंदा आहिनि ऐं घरनि में जेको आहे न कमु वधी वेंदो आहे, सफ़ायूं हूंदियूं आहिनि या वरी अगरि बकरा तव्हांजे घर में अची चुका आहिनि त बकरनि जो बि इलाही सारो कमु वधी वेंदो आहे. त तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हांजे घर में जेके कमु वधी वेंदा आहिनि ख़ासि करे ईदनि जे मौक़नि ते, ऐं हिन बार ईद जो कमु त मूंखे लॻंदो आहे कुझु ज्यादा हूंदो आहे, सवायो हूंदो आहे. ईअं हूंदो आहे न, त मूंखे तव्हां इहो ॿुधाईंदा त कम खां बचण जे लाइ तव्हां कहिड़ो घर में बहानो कंदा आहियो जेको तव्हांखे लॻे त बाबा हीउ बहानो करे मां बची वेंदमि पंहिंजे घर वारनि खां. हिकु त गर्मी बि ॾाढी आहे, इहा बि ॻाल्हि तव्हां पंहिंजे ज़हन में रखो. गर्मी जे बावजूद बि अगरि तव्हांजा घर वारा तव्हां खां इलाही सारो कमु कराईंदा आहिनि त पोइ तव्हां घर वारनि खां बचण जे लाइ कहिड़ा बहाना ठाहींदा आहियो, इहो तव्हां अॼु मूंखे ॿुधाइण वारा आहियो. हुन सां गॾोगॾु अगरि तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियण चाहियो था त पोइ तव्हां छा कंदा बाबा, अपना सेल्फ उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए एल आर के सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जी, उसको आपने फॉलो कर लेना. और पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की जो ना वो लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए ताकि लोगों को पता चले कि भाईजान हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है. और प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें आप लोगों को व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोग करने वाले हैं और जबकि देखा जाए तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनका इस्तेमाल करें, बस इस्तेमाल करने के बाद हमें खूबसूरत जो है ना वो रिजल्ट मिलता जाए. तो ये मिल जाएगा जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595. ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जा रहे हैं, वहां से जाकर इजीली आप परचेज करते रहिए क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए है. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज का फेस वॉश है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है. उसके बाद व्हाइट एज का ना जो व्हाइट एज की लवली क्रीम है, व्हाइट एज की लवली क्रीम तो भाई आप लोगों के लिए ऐसा समझे कि गेम चेंजर वाला काम करेगी आपकी स्किन के ऊपर. अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते, मेकअप से दूर भागते हैं या फिर गर्मियों में आपसे मेकअप होता नहीं है तो व्हाइट एज की लवली क्रीम बस आप परचेज कर लें, अपने पास रख लें. ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट होने वाला है. और उसके अलावा अगर गर्मियों का सीजन आ जाता है और आपके चेहरे पर एक्नी भी आ जाते हैं तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब है जो कि एक्नी क्लियर वाला ट्यूब है, डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप परचेज करते तो आपको इजीली मिल जाता है. ये भी ट्यूब आपके चेहरे की एक्नी को खत्म करने के लिए बनाया गया. और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताते रहेंगे जनाब पूरे पूरे प्रोग्राम में. आप मुझे जरा आज ये बताने वाले हैं कि काम के ऐसा है ना कि काम आजकल मुझे लग रहा है ऐसा, या तो फिर हमारे घर में बहुत ज्यादा काम है तो मुझे लग रहा है कि जैसे करीब आ रही है तो काम बढ़ता जा रहा है. तो मुझे बताएं कि काम से बचने के लिए आजकल आप अपने घर वालों से कौन सा बहाना बना रहे हैं कि आप अपने काम से जो है ना वो बच भी रहे हैं और चवना है ना नांग भी मरे लठ भी बचे वो वारो सीना मुख्य बतायो. और ये आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है जी प्रोग्राम में. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं कभी दिलबर कभी दुश्मन कभी दिलदार हो जाना, कहां से तुमने सीखा है बड़ा बेजार हो जाना, कभी मिलकर रकीबों से हमारे हाल पे हंसना, कभी मेरी मोहब्बत में गुलो गुलजार हो जाना. वाह वाह वाह वाह. कहते सॉन्ग बिल्कुल जी ये वाला गाना आपको सुनाएंगे, जरा ये कॉमेंट आप दोबारा से मुझे शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कॉमेंट ऊपर चला जाएगा. हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है. कैसे हिदायतुल्लाह, ठीक ठाक? इमरान खान रुख हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी. और किशोर भाई कहते हैं वालेकुम असलाम, अदा परेशान थियण असां जे परेशान थियण असां जा दुश्मन असां त परेशान करण वारा आहियूं थियण वारा न इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे वैसे करण वारा बि न बणजो बस खुश खुश रहो ऐं माण्हुनि खे बि खुश खुश रखो अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरन से आप हमारे साथ हैं जी वेलकम करते हैं और जीशान अली राहू जा हमारे साथ मौजूद हैं जीशान भाई आपको भी वेलकम हो किशोर भाई कहते हैं सॉरी अदी कल नहीं आया क्योंकि सारा दिन कपड़े धोए फिर इस्त्री की फिर कहा इस्त्री कल लाना इस्त्री तो वैसे कल ही आएगी और उसके साथ साथ जो है ना मैं ये खुद ही सोच रही थी मुझे लग रहा था कि कल मैं नहीं आई थी प्रोग्राम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है ना वो छुट्टी की थी ऐसा फील हुआ मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दिनों से प्रोग्राम करने नहीं आई लेकिन नहीं भाई सिर्फ मैं कल का दिन ही नहीं आई थी और उसके अलावा जो बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है बस आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा प्रोग्राम सुनते रहिए और खूबसूरती के राज जो है ना वो जानते रहिए क्योंकि यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है खूबसूरती के राजों को जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो बस बने रहिए हमारे साथ मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए मोरू
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

White Age and the Skin Beauty Show sponsored किया जा रहा है White Age Beauty Products and the Skin Beauty Products के दावों से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है? बिल्कुल जी आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं और क्या कह रही हैं ये भी देखते हैं. क्या यार क्या यार, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. अच्छा चाचा खाले तो हमारे साथ माजूदी. वालेकुम अस्सलाम बेटा सिडो, हाउ आर यू, हाउ फाइन बेटा सिद्रा मुस्कान. जी जी मैं सफा भली ताम उदा किया. हालार हमारे साथ माजूद है. हालार भाई वालेकुम अस्सलाम. और एसन अली अरबानी वालेकुम अस्सलाम, कहते ओ माय फेवरेट आरजे केसी यार, वेलकम दिल से व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो में आपको भी वेलकम, खुश आमदीद. उदास लड़की कहती हेलो ओपा, ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल मी एंड

for you. Thank you, my OP. आशिक अली जलवानी हमारे साथ मौजूद है. हेलो, हिदायत अल्लाह कहते हैं टॉपिक वैसे घर वालों से बहाने चलते तो नहीं, लेकिन मैं तो कह देता हूँ मेरे चप्पल में, अच्छा मेरी चेल में सूर्य. अच्छा लगा चप्पल में पता नहीं क्या होगा. चले वैसे अच्छा बहाना है चेल में सूर्य. अच्छा निदा कहती है ये टॉपिक मैं तो काम करती नहीं, जवाब क्या दूं अब. ये भी ना हो तो आने कोई ना कौन कोई काम तो जरूर दवा करना होगा. अब्दुल रजाक जरदारी भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम. आदिल कहते हैं ये सॉन्ग, हाँ जी बिल्कुल आपका गाना लगा देगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए.

मुंहिंजे चाचा ख़ालिद कई अथई की कम कोन्हे, कम लाइ ॿिया माण्हू आहिनि, मेड आहे रखियल, सॼे कम सॼो कम व्हाट्सअप ते योर टॉपिक आंसर। ओके ओके चाचा, मतिलब तव्हांजी तरक़ी थी वई आहे। प्रेम चंद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और ये महर इरफान सियाह साहब हमारे साथ मौजूद है। ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे, थैंक यू वेरी मच। महर इरफान सियाह साहब वेलकम कहा जाता है। और किशोर भाई कहते टॉपिक कहते मुख्य बहानो करण की जरूरत न पवंदी है, अगर मना करे छी तो करे छी। अल्लाह डोंट, जो बोल दिया सो बोल दिया। ये सफा अरे सुमाटो गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे थे, उस दिन आपने बोला मुझे याद दिलाना सॉन्ग। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, तो आप अपना गाना एंजॉय कीजिए। और उसके अलावा हेंजी जहीर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजे, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? डरते दिल आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम स्वीनी। किशोर भाई बिल्कुल ऐसी बात है, यह गाल तवा के जहन में छूना आई हुई।

भाई हमारे साथ हैं फ्रॉम समंदर पार. अच्छा अच्छा चलो यानी तमा असा के बुधो प्रयास मोहब्बतन पहले भाग और ये हैं जी किशोर भाई की तौबा तक जे न तो इतरो याद रखें तो या लिखी रखनो याद हुंदो है याद या वरी मुझी कड़ी आदत हुंदी मां दिसी जका छे मतलब पढ़नी आ न वो मुका पढ़ी ना में याद बाबा यो सानो ज़हन तव और निदड़ी कहती एक दिन उसने मुझसे कहा क्यूट बन के दिखाओ फिर मैंने उसके

अच्छा मां अञा ताईं वेठी सोचां थी न खिलणो हो हिन ते छो त ॻाल्हि थोरी समुझ में न आई अगर ऐसा कोई सवाल आपसे करे तो आप उन्हें सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि आप जो है ना व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स लगाइए भाई। बात इतनी सी है कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं जिसमें आप लोगों के लिए व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम मौजूद है, व्हाइट एज का फेस वॉश है, सोप है, व्हाइट एज की लवली क्रीम है, बाबा वाह वाह, आई डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब भी आए जो फुल डॉक्टर की तस्दीक से तैयार थियल है, यानी कोई भी चीज इन में एड थियल ना है जो तुम सोचो तो बाबा लगाए या न लगाए, बिल्कुल तुम लगाए सको था, टेंशन की गाल ही को निकाल।

चाचा खालिद कहते हैं हाथ साफ कैसे होंगे, हाथों में तो व्हाइटिश लवली क्रीम होगी ना, तो तमाम पेरेंट्स चंगे तरीके से पांजो फेस वॉश करे पो खन जो ना व्हाइटिश जी लवली क्रीम लगाने जी लाइक वैसे मावरी थोड़ी नहीं है मतलब मां सोचिन तो धोने का कोई भी मुखे लगता तो मुझे हाथ साफ ना दे तो फाई जी मामले में थोड़ी साइको है यार लगंदो आ दरवाजा जो बंद कयो ता खराब थी यार सच्चाई अगर वाकई में घड़ी घड़ी हथ धोआ तो मुझे लगे तो मुझे सारी जिंदगी सिर्फ हथ धोने में गुजरी वेंदी।

0: रानी जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है वाकई। दर्दी दिल कहती हैं, टॉपिक चंदा, अगर मुझे कोई काम बोल दे तो मैं कहती हूँ रुको मैं आती हूँ, फिर तुम शायद गायब हो जाती होगी। अच्छी बात है वैसे। अच्छा फरमाइशों अज मुखे थोड़ी नजर आयो अना लगे तो तभी रस्ते में आयन शायद जल्दी जल्दी फरमाइश कर ना अगते ना कम तुम थोड़ा खराब थे तुम फरमाइश न ली सकते। अच्छा हजार भाई भी आ चुके हैं। हजार भाई वालेकुम अस्सलाम, खुश आयो। अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर के नालो बिल्कुल बिल्कुल सफाई है, सोना सोना थी वेंदा जडी तांगे खबर पंदी। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो तवाजे खूबसूरती जला केडो ज्यादा जरूरी है, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो तमा इस्तेमाल कयो आई डायल कयो 03-15-799-0595। उनका अलावा असा सगड मौजूद है फजीला, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। हाँ जी आपको भी वेलकम मेरी प्यारी जान, और आपको भी खुश आमदीद, आपने अपनी अम्मी जान और कायनात और सभी लड़कियों को सलाम दिया है। टॉपिक कहती अम्मी की छोटी सी जान, ससुराल की बड़ी बहू है, नो बहाना। हाँ जी ये वैसे सही बात है, अगर आप मायके में आगे बरसाइयां चल रही होती है ससुराल में आपको पता चलता है घड़े भी ऐसा हुआ। इंजॉय कीजिए भाई, और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, और उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। पूरे पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो में।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
2: न्यूज़। सदर मसूद खुशियान बाकर कालीबात मुलाकातों कद
3: primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously other countries have interest, because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
2: Field Marshal Asim Munir san lagatar rabte mein aaya hu, umeed hai Iran san jald muahido tay thi vendo. America je pade wazir Marco Rubio Sweden mein saath sa galainde chawa Tehran san muahido na thyo, त प्लान बी भी मौजूद है, मुआदो थो तो अब नहर मस खुली वो ईरान से डील असि पे तरजीह है। ईरान अमेरिका के मुतालबन के अमुन गारण में सब का वही रंडक करार दे छो। ईरानी परी वजीर अब्बास राखी जो गडियल कौम के सेक्रेटरी जनरल से फोन से राबतो। अब्बास राखी अमरीका माजी में अधूरन वायदन आई फौजी हमलों जरिए सफारतकारी के नुकसान पहुंचाई रो है। तेहरान पाकिस्तान के सालसी में अमन गार्डन में संजीदगी से हिस्सों वी रो है। इन्हों गोथर सफारती अमल जारी रखने पर जोर भर। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के 3 दिन के सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो। वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम बेन से मुलाकातों कद मुलाकात दौरान पाक चीन लागपन समेत खिते सुरुथियाल अमन के कयाम लाय पाकिस्तान के साथी वार कोशिश के ख्याल की डेवट कई वी। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गियावर्ड अहदे ता इस्तीफा दे छी। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर मुकर थियल तुलसी 30 जून 2026 से अहद छड़ी। अमरीकी मीडिया मूजिब तुलसी ईरान जंग बाबत ट्रंप इंतजामिया का अलग मौकफ रखन्दी हुई। मेरठ के औरतन में पिंक स्कूटीज विराय रहा हूं, औरतन के तरबियत लाइसेंस मुफ्त में स्कूटीज दियो पाया। हैदराबाद में औरतन के पिंक स्कूटी ॾियण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमण चयो त सिंध हुकूमत वॾा मनसूबा ॾिना आहिनि, सूबे ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ कम जारी रखंदासीं। केपी बनू वारे इलाके में पुलिस ऐं सीटीटी जो ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी, 10 किलो वज़नी देसी साख़्ता बम नाकारा बणायो वियो। पुलिस मूजिब गुझे इतलाह ते सीटीटी सां गॾु ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन दौरान हिकु पुलिस अहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी बि थियो। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी सईद मेमण जे अॻवा में कराची वासी अमाद जे मुलसण ते शक ज़ाहिर करे छॾियो। डॉक्टर कादर मक्सी केटीन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सईद मेमण जी बाज़ियाबी लाइ कोशिशूं वठण जी बुनियादी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत जी आहे। सईद मेमण जो 2 महीना पहिरियां दिल जो बाईपास थियो आहे, हुन ज़िंदगी खे ख़तरो आहे। सईद मेमण खे कुझु ॾींहं पहिरियां मुबैना तौर ते बलूचिस्तान मां अगवा कयो वियो आहे। खैरपुर वेझो गोठाणे जो अंबनि जे बाग मां गलो कपियल लाश ते इतलाह ते पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस मौजूदु मक़सूल मोहम्मद रमज़ान पुलकोटो नेवीअ में मुलाज़िम आहे। वाकिए बाबति वधीक जांच करियूं पिया। मीरपुर माथेलो भरिसां समय जा बिरादरी जे ॿिनि ॼणनि में झेड़ो, हिकु ॼणो मारिजी वियो। घोट मोहम्मद आलम चांडियो में ज़मीन जी मालिकी तां झेड़ो थियो। लठियूं ऐं सुरुटा लॻण सां अकबर समय जो क़तल थी वियो, 8 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। खैबर भरिसां औरत जो रोड़ी केनाल मां लाश सुञाणप न थी। थुलमे गोठाणे की ओताक ते कतल कंदड़ वडेरे जे पुट खे पुलिस गिरफ़्तार करण में नाकाम। मक़तूल गोठाणे अजमल उर्फ नौमान मेमण जी नज़र नमाज़ बाद तदफीन। वारसनि मूजिब वडेरे सईद अहमद सरकी जे पुट बिलाल सरकी नशे में नौजवान खे बंगले ते घुराए कतल कयो। पुलिस बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। दोदापुर में बिरोही बिरादरीअ में हलंदड़ खूनी तकरार जो जरगो ज़रिए निबेरो। ॾोही धुर ते 90 लख ॾंड मुक़रर। घोट बख़्शण बिरोही में अब्दुल मालिक बिरोही ऐं माणिक बिरोही जे धुरन में हलंदड़ तकरार जो जरगो थियो। अब्दुल मालिक धुर मथां हिकु खून ऐं हिक खे ज़ख़्मी करण जो ॾोह साबित थियण ते 90 लख ॾंड मुक़रर कयो वियो। 2 साल अॻु ज़मीनी तकरार तां झेड़े में पिरियल बिरोही क़तल थी पियो हो। हिकु ॼणो ज़ख़्मी थियो। न्यू साउथ अबाद में 2 साल अॻु क़तल थियल नौजवान बादशाह आबड़े जो क़तल जो जरगो ॾोह साबित थियण ते जवाबदार धुर मथां 96 लख ॾंड मुक़रर। मोहम्मद खान जोड़े जो सरपंचीअ में घोट शाहनवाज़ जोड़े जो में जरगो थियो। नौजवान जे क़तल जो ॾोह 3 ॼणनि ते साबित थियो। जवाबदार यासिर काका, मुश्ताक काका सेंट्रल जेल हैदराबाद में क़ैद आहिनि। हिकु जवाबदार दानिश मलिक रूपोश आहे। जवाबदार धुर 3 महीननि अंदरि ॾंड जी रक़म अदा कंदो, जंहिं बाद मक़तूल जा वारिस राज़ीनामो जमा कराईंदा।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खत्ते की बनी है आवाज
3: GA FM 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

सॉफ्ट थींदी, ग्लोइंग थींदी, ईअं लॻंदो तव्हांखे नेचुरल बाबा असांजी स्किन में जेको आहे हाणे ख़ूबसूरती अचणु शुरू थी वई आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां बिल्कुलु ॼाणींदा आहियो त वाइटमिन ई बीट सां तयारु थियल आहे. उन खां अलावा माइक्रो बीट फार्मुलेशन बि अथसि जनाब. सिर्फ़ तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी 2 रातियुनि जे इस्तेमाल सां. अगरि तव्हां 2 रातियूं इस्तेमालु कंदा आहियो, अगरि तव्हां लॻायो था फेस वॉश करे प्रॉपर तरीक़े सां, त तव्हांखे बिल्कुलु 2 रातियुनि जे अंदरि रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि आप इस्तेमालु करते हैं तो आपके जल्द की खूबसूरती जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपकी खूबसूरती की हिफाजत होने लग जाती है और एक मयारी ब्यूटी क्रीम ऐसा लगता है कि आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे हमें कैसे मिलने वाले हैं. तो फायदे तो खैर आपको मिलेंगे लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर नुकसान बहुत ज्यादा छोड़ कर जाते हैं. तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें जो कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयारशुदा हो, आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, आप लोगों को हमेशा के लिए पाला पाला बना दे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस साबित होगी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा जो है नरम, मुलायम और तरोताजा हो जाता है और उसके अलावा आपकी स्किन में जो है वो खूबसूरती आना स्टार्ट हो जाती है. और इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जिंदगी जो बेरोनकी है ना वो भी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खुसूसी अज्जा जो जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं और खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं. तो रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो कुदरती खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है. आपके चेहरे पर अगर निशानात हो, एक्नी हो, डार्क सर्कल्स हो, बहुत सारे ऐसे मसाले जो कि आप चाहते हैं कि ये खत्म होने चाहिए, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, आप इस्तेमाल तो कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और साथ में आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन फेस वॉश जो कि आप लोगों को इजिली कहीं से भी मिल सकता है. और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार शुदा है जो कि आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना वो क्लीन करता है और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है. डी स्किन का फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करते हैं ताकि स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, बटर की तरह स्मूथ हो जाती है, तो स्मूथ लाइक बटर हो जाएगा सीन. और इसके अलावा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जब आप दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, रात के टाइम फेस वॉश कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, 2 रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए और डायल करते जाइए 03-15-799-0595. इहा बि ॻाल्हि ख़बर पई आहे त तव्हां नंबर ते राबितो घटि कयो पिया, इन लाइ तव्हां घटि कयो पिया, तव्हां घटि छो था कयो बाबा? घटि अगरि तव्हां राबितो कंदा त अॻिलनि माण्हुनि खे कीअं ख़बर पवंदी त किथे किथे अञा ताईं प्रोडक्ट अवेलेबल न आहे थियो? सो तव्हां सीरियस थियो ऐं नंबर खे डायल कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं ॿुधायो जनाब त किथे किथे नथो मिले प्रोडक्ट ताकी असां अवेलेबल कराए सघूं. असांजे लाइ बि आसानी थी वञे, तव्हांजे लाइ बि आसानी थी वञे. तव्हां इस्तेमालु कयो ही सभु प्रोडक्ट जेके तव्हांजे आसानी जे लाइ, तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ तव्हांखे ॿुधाया वञनि पिया.

ராஜா வேசி பிரியஜி தாரிஃபா யா பிரியதி டோக்கு கிடைக்கும். किथे किथे असा की गाल थोड़ी समझ में नहीं आ तो ये असा जी तारीफ थे पई या असा दे टोक कई वने पई ये थिंदो वाकई मर्दबा.

अगुरी ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो पियो न सगड़ो गॾु जी जी हाने लगो वाके तारीफ पयो करे अच्छा ये गानो केंके डेडी केड़ा बुधायो तो सही लुबना हमारे साथ मौजूद है केती अस्सलाम वालेकुम शुरू जाने के हाले में भी आके साथ साथ हूं तमाम बेहतरीन शो चल रहा है आपका सलाम टू माय फ्रेंड निदली एंड क्यूट गर्ल्स ओके ओके जी हमारी प्यारी लुबी को हम वेलकम करते हैं

0: तव्हां वाइट एज जा प्रोडक्ट लॻायो पिया या डी स्किन जा प्रोडक्ट लॻायो पिया, मूंखे ॿुधाईंदा हलो। हुन सां गॾु अगरि तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण जे बारे में सोचो था, तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। जे ख़बर पए बाबा मीरपुर खास से अब्दुल्ला महरी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम बाजी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है, वाह सही वाह, तव्हां इस्तेमाल कयो पिया, मेहरबानियूं ऐं मोहबतूं प्यारे भाजू। इरम कहती है, मां घोड़ थी आ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, प्लीज प्ले मुमताज मोलाई, हाजिर हाजिर हलायूं था मुमताज मोलाई। मकसूद मना कहते मेहरापुर से, हेलो जी सिद्रा मुस्कान जी, मैं ऐसा लगता है कि मैं क्रीम लगाऊंगा तो मैं गोरा तो हो जाऊंगा ना, थोड़ा बुधा
1: तो
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त बेशक तव्हां गोरा थी वेंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां बिल्कुल मेहरापुर मां पुछा करायो, मिले थी त वठी अचो, सही
1: आहे।
0: उन खां अलावा ये मौजूद है, हाय आर जे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, सुनो दुनिया वालो दिल बड़ा करके सुनो, जब जिंदगी में खुश रहना है तो मुनाफिकों से बचते रहना, बचते रहना बाबा, बचते रहना रे बाबा, हाजिर हाजिर। और वफा अब्दुल गफार खास के लिए हमारे साथ है, एंड नईम अहमद खास के लिए, वालेकुम असलाम सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं, मुझे सॉन्ग सुनाए शायद अली बबर का कोई भी, हाजिर हाजिर। शायद बबर जो गाना लिस्ट पे मौजूद है तो वहाँ लाजमी बुदला। और मकसूद मला कहते मेहरापुर से, आज ये प्रोडक्ट लेने जाऊंगा और अगर मेरे घर वालों को ये प्रोडक्ट अच्छे ना लगे तो मेरी पिटाई पक्की है। नहीं नहीं, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे, वो आपकी तारीफ करेंगे, बस तव्हां वठी वञो त सही घर, वो तव्हां मूंखे दुआ ॾींदा। और ये है जी सिद्रा सकलीन अब्बास हमारे साथ हैं, कैसी हैं आप, उम्मीद है कि अच्छी होंगी। जी जी सफा अच्छी थी पई है, और कहते अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हिकड़ी ॻाल्हि आहे न, माण्हू कुझु मूं ॿुधा आहिनि त जेके चवंदा आहिनि असांजो सियारे में जेको रंग सही थी वेंदो आहे, सियारे में असां गोरा थींदा चिटा थींदा, पर मुंहिंजो रुबतो अथव, मां गर्मियुनि में चिटी थी वेंदी आहियां। या त रे कमाल आहे बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो, या त वाइट एज लवली क्रीम जो कमाल हूंदव, तव्हां बि लॻायो, तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो।

ओगरी कश्यप भी हमारे साथ माधुर वाले को मसलाम कहते हैं। सिंडो जानी क्या हाल है, गुड आफ्टरनून, वेलकम, दिल से आपको भी वेलकम कहते प्यारी। और ये अनीता हमारे साथ ही और सकलीन अबासी भी हमारे साथ है, या फिर सकलीन अबास ने खाली ओके जी, और आपको वेलकम कर दे। बाकी आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आया। और कश्यप कहती है सिंडो एडवांस ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, और सॉन्ग सुनाना ईद मुबारक यू ईद ते बुधना सिंह बाबा, और उनका अलावा एडवांस वाली तवाजी ईद मुबारक खड़ी छी। बाकी गाना ईद ते बुधना गाल तव सिद्धी वोट मोहम्मद तैयब थेबू खां भी बुला थेबू कहते तवान जो शो वेरी नाइस आहे सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम भा एरम कहते दिलबर आपी हां जी चले ये तो अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा खाले जुने जो तवान जो मोहब्बत हूं प्रोग्राम बदो पे पैनल ते मैसेज कियो तव। और मकसूद मला कहते हैं खुश रहे और शायद आगे आपको मैसेज थोड़ा मिसिंग पार्ट हो चुका है, आप जो सोच रहे ना वो सोच आपकी मुझ तक पहुंच ना सकी है, तो बताइए जरा क्या आप सोच रहे हैं। और फहद दे रही है सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह सलाम अदी शो तवाजो नाइस आए वालेकुम असलाम भा मोहब्बत अदी लबरू है कहते बाजी चले भाई मैं कोशिश करती हूँ आपका गाना सुनेंगे ठीक है। और युसरा आज हमारे साथ है, युसरा ने दो लव्स और ऐड कर ली अपने मैसेज में, लिखा है युसरा अली हाय युसरा अली हेलो कैसी है ठीक है। और हेजी गोट मीर शेर खान टालपुर से अलाडिनो खान टालपुर और आपका शो वेरी वेरी नाइस है सलाम आपको जी वालेकुम असलाम। गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खान कुर्बान अली खास के लिए है बाजी झंडो मरी में क्रीम मिल रही है और फैमिली इस्तेमाल करे पे रिजल्ट वीआईपी मिलू आए वाह साई वाह ई असली बुधाईंदा कयो और मोहब्बत हूँ प्यारे भाजू। और हे जी इरम कहती से जानी जवाब है शादी से पहले मैं बहुत बड़े बड़े बहाने बनाती थी नखरे करती थी, अब शादी के बाद मेरी सारे बहाने नखरे खत्म हो गए चले ये भी अच्छी बात है। और प्रिंस अहमद अली रिंद है फ्रॉम अहमद अब्बास। अच्छा भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारा शो सुन रहे हैं।

0: आवाज से सही गाना बुधो से उनका इलावा हने टाइम थी वादा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वटू था तो ब्रेक ते पेर भी लाजमी हुदो आए ब्रेक हां पोई जल्दी वापसी तवाने मोटी जो समाते बैठा हो जो मा सफा ओ ही मनी ओ ही मोटा दे सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज ऑन दी स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंद दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत ओ यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ٹی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
5: कारोबार की तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
6: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
5: 0331252576
6: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेट सिंध की आवाज।
2: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अजनबी जरा सोच लो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप लोगों के समातों के नजर वाकई ये जो गाने हैं ना, ये टांगों की दौड़ वाले गाने हैं, तो जब आप ये वाले गाने सुनते हैं तो जाहिर सी बात है हमें टांगे याद आएंगे। और बहुत ही प्यारा ये म्यूजिक कलेक्शन है, मुझे आप बोल दिया करें मैं आपको ओल्डी गोल्डी गाने भी सुना दिया करूंगी। वैसे आप सोचेंगे सिद्रा के प्रोग्राम में ये वाले गाने मतलब ऐसा कि जैसे कोई मुख्तलिफ सी बात आप लोगों को लगती है, लेकिन हाँ मैं चलाती हूँ मुझे पसंद है ऐसे गाने, लेकिन अलग बात है कि आपके पसंद के गानों की आड़ी चल जाते ये वाले गाने और मैं चला नहीं पाती हूँ। वेल प्रोग्राम का लास्ट लिंक आ चुका है, मैंने यहाँ सोचा कि जरा आप लोगों को ऐसे वाले गाने सुनाती हूँ, दो तीन तो लिस्ट में होने ही चाहिए। ये भी बहुत प्यारा गाना है, आपको जरूर पसंद आएगा कभी मैं सोचता हूँ।

मैंने वही सोचा कि मैं जरा अपनी बात को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे. और यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हमारा और आप ये नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के तावन से. तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03 1579905 95.

वैसे सही बात है, कहने से बेहतर है कि इंसान खामोश ही रहे. ओके जी, आपके मैसेजेस हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि भाई हमारी जानिब आएं. और अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ हमारा शो पसंद करते हैं. बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपको वेलकम है. और एहसन कहते हैं कि टॉपिक बहानों नायो कदा कम करे जान चढ़ाई आयो. चले ये भी अच्छी बात है. नूर हसन सुनियो भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना दूर से हमारा शो सुन रहे हैं. टाटा खालिद कहते ईद का पोए नंबर से राबतो कंदासी. फिलहाल ईद का पोए नंबर से राबतो कंदा ये छो नंबर से राबतो हाने कयो प्रोडक्ट भी हाने वेठो इन चंदी माई दखा पोना बाबा हाने वेठो हाने. और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है अवाजा खुश आयो अदी अवाजा प्रोग्राम वडी शौक सा बुधु पया अदी अलाइ शो अवां जो चैनल मुझे एफएम रेडियो ते हले न पयो मा डाढो कोशिश कया पर सकरन एफएम ता शो बुधंदो आ अच्छा भा बिल्कुल तुम कोशिश कर एफएम ते भी हली वो असो चैनल उन अलावा अगर नो रही तो तुम असें सोशल मीडिया से बुधी सो फेसबुक है असो गूगल से बुधी सो बहुत सारा तरीकेकार बुधन के लिए बस दिल वही कर. और ये भाई हमारे साथ हैं, नाम है आपका सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, शफियाबाद नवाबशाह से हैं जी. बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं सब भाइयों को.

बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना। कभी मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसा पूरा प्रोग्राम करूँ जिसमें ये सारे ओल्डी गोल्डी गाने सुनाऊँ आप लोगों को, और आप लोगों के में से किसी की फरमाइश ना हो, लेकिन हाँ उन लोगों की फरमाइश चलेगी जो कि मतलब ओल्डी गोल्डी गाने की फरमाइश करेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा गाना हम लिस्ट में लगा चुके हैं। और सियासत विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हैं। रऊफ मक्सी का गाना सुनाएं। जी बिल्कुल, आपको कल सुनाएंगे रऊफ मक्सी का गाना। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

19 सनावला बिरोई मर्सद माजू दिवाली कुम असलाम निजाम भट्टी काजरी हमारे साथी वालेकुम असलम मटियारी का तमाम शोभ दो पया मोहब्बतू प्यारी भाजू आई मटियारी में मिलन था कौन असन प्रोडक्ट पूछा कर आयो निजाम भा।

0: अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सदरा मैं आज फिर जाऊंगी मीरपुर खास, अगर क्रीम मिली तो लेकर आऊंगी शो के बाद, शो सुन लूं पहले। ठीक है ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा ठीक है कि मिला प्रोडक्ट या नहीं मिला। ऐसे कहते हैं असा कुछ डी मोकल खपे ईद का वापस इंदासी मोटी। चलो ठीक है, बक्तली सियाल हमारे साथ मौजूद है। हेलो
1: प्यार करने लगे।
0: अच्छा आरजी भला से हमारे साथ मौजूद है। हेलो कैसे हैं?

अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि सब पहले इंसान अपने घर में, सबसे पहले इंसान अपने घर में इज्जत बनाए क्योंकि उससे कोई बहाना बनाना ना पड़ेगा. अच्छा मतलब यह गलत है, असानी घर में इज्जत कोने का मन यह गाल. हाँ.

में से ये गाना हमने एंजॉय किया. एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक होने वाला है, और ये गाना शायद अली बबर की आवाज में होने वाला है. तो शायद बबर का गाना सुनेंगे और उसके साथ साथ भाई जान आपको बताएंगे कि आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट से, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट से आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये हमें बता दिया करें, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खूबसूरत होना चाहते हैं. तो खूबसूरत होइए और साथ साथ अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और डायल करते रहिए 03 15 799 0595.

ये तो आपने किशोर भाई बेइज्जती कर दी। इट्स सोनू हमारे साथ है। सोनू आपको वेलकम हो गया। चाचा कहते हैं कि व्हाइट एश लवली क्रीम यूज करेंगे। व्हाइट एश की लवली क्रीम भाई सारे लोग ही यूज करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वासा भाई भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो वासा भाई। अच्छा आदिल कहते हैं कि ये वाला ओल्डी गाना, ये वाला हाँ वैसे ये गाना मेरा फेवरेट है लेकिन ये इंडियन गाना है। बात यहाँ पर आकर बिगड़ जाती है।

अरे कश्यप थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और कश्यप खान भी हमारे साथ मौजूद है, मुझे नहीं पता कि ये दोनों अलग अलग हैं। वेल, आप दोनों को वेलकम करते हैं, एक कश्यप जो पैनल पर मैसेज करती, दूसरी जिसने कमेंट किया था। ओके, तो सब लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया, आप हमारे शो में शामिल रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने होने का एहसास लाते हैं और आप प्रोग्राम में मोहब्बतों के साथ रहते हैं और आप इस्तेमाल करते हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड डी स्किन के प्रोडक्ट। अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई डी स्किन में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। बाकी व्हाइट एज के तो आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते जाए। ईद पर तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा व्हाइट एज लवली क्रीम को। और इसी के साथ साथ आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। वरी इंशाल्लाह सुभाने मुझे अमां से मुलाकात थी हमारी 1 बजे का 3 बजे थे तमाम जो समझो साथ हूं दुआ है सुबह ओ इनो सुनो ख्याल रखना किसी का गलती थी मुझे तमाम माजरत कया पे सो मुकरानी नाहे बाबू से सलामत साथ सलामत अल्लाह हाफिज बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: ईरान ऐं अमरीका में सरचाव लाइ पाकिस्तान जूं टाकरे वारियूं कोशिशूं तेज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी तेहरान में ईरानी पहिरीं वज़ीर अब्बास इराक़ी सां मुलाक़ात। ईरानी मीडिया मौजूदु मुलाक़ात दौरान जंग जे ख़ात्मे वारे तजवीज़ तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि कई वई। क़तरी वफ़द बि तेहरान में मौजूदु। ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरो टाकरे वारियुनि कोशिशुनि जो हिसो आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर मसूद पश्चान, बाकिर कालीबाज ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो।
1: The primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously other countries have interests, because especially Gulf countries that are in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
0: Field Marshal Asim Munir san lagatar raabte mein aaye hu, ummeed hai ki Iran sab jald muahido tay thi vendo. America je pardi wazir Marco Rubio Sweden mein saafin san galainde chayo hai, Tehran sa muahido na thiyo to plan B ba maujood hai. वाइदो थियो त अॻियां हुरमस खुली वेंदो। ईरान सां डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे। ईरान अमरीका जे मुतालबनि खे अमन ॻाल्हियुनि में सभ खां वॾी रंडक करार ॾेई छॾियो। ईरानी पहिरीं वज़ीर अब्बास इराक़ी जो गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल सां फोन ते राब्तो। अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमरीका माज़ी में अधूरनि वाइदनि ऐं फ़ौजी हमलनि ज़रिए सफारतकारी खे नुक़सान पहुचाईंदो रहियो आहे। तेहरान पाकिस्तान जे सालसी में अमुन गारियुनि में संजीदगी सां हिसो वठी रहियो आहे। हिन चुनियो गोत्र सफारती अमले जारी रखण ते ज़ोर भरियो। क़तरी वज़ीर आज़म जो ईरानी पटी वज़ीर अब्बास इराक़ी सां फोन ते राब्तो। अमरीका ईरान में जारी ॻाल्हियुनि में थींदड़ अकबराई ते ॻाल्हियूं क़तरी वज़ीर आज़म अब्बास इराक़ी ते मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए करण ते ज़ोर भरियो। अब्बास इराक़ी सूरतहाल ते ओमान जे हम मनसब सां बि ॻाल्हि ॿोल कई, सफारती कोशिशुनि ते गौर कयो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जे टिन ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते बीजिंग रवानो। वज़ीर आज़म चीन सदर वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि दौरान पाक चीन लाॻापनि समेत ख़िते सूरतहाल ऐं अमुन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जे सालसीदारनि कोशिशुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वेंदी। अमरीका जे नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर ते मुक़ररु थियल तुलसी ग्याबोर्ड 30 जून 2026 ते उहिदो छॾींदी। अमरीकी मीडिया मौजूदु तुलसी ईरान जंग बाबति ट्रंप इंतज़ामिया खां अलॻि मौक़िफ़ रखंदी हुई। मेरठ ते औरतुनि में पिंक स्कूटीज़ विरिहाए रहिया आहियूं। औरतुनि खे तरबियत, लाइसेंस ऐं मुफ़्त में स्कूटीज़ ॾेई रहिया आहियूं। हैदराबाद में औरतुनि खे पिंक स्कूटी ॾियण वारे तकरीब ख़िताब कंदे सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमण चयो त सिंध हुकूमत वॾा मंसूबा ॾिना आहिनि, सूबे ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ कम जारी रखंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीलीना मेमण हैदराबाद में 200 औरतुनि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ बि विरिहायूं।

केपी बनुवारे इलाके में पुलिस ए सीटीटी जो ऑपरेशन अठ दहशतगर्द मारजी विया केतरा ही जख्मी 10 किलो वजनी देसी साख्त बम नाकारा बनाया वो पुलिस मूजिब कुछ इतलात सीटीटी से गड ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन दौरान एक पुलिस अहलकार शहीद जड़े तो एक जख्मी थो एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी सईद मेमन के अगवा में कराची वासी अमाद में मुलस रहन पर शक जाहिर कर छो डॉक्टर कादर मक्सी केटीएन न्यूज से गालाइंदे सईद मेमन की बाजियाबी लाइ कोशिश वन की बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है सईद मेमन जो ब महीना पैरा दिल जो बायपास थो जिंदगी के खतरो है सईद मेमन के कुछ डी पैरा मुबैना तौर से बलूचिस्तान में अगवा किया पो है खैरपुर वेझो गोठाने जो अंबन के बाग में गलो कपल लाश हथ इजलात पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल किया पुलिस मौजूद मकतूल मोहम्मद रमजान फुलफुटो नेवी में मुलाजिम है वाक्य बाबत जांच जारी है मीरपुर माथिलो बरसा समेचा बिरादरी के विंदड़ में झेड़ो एक जणो मारजी पो गोठ मोहम्मद आलम चांडियो में जमीन की मालिकी से झेड़ो थो लटियों और सरोटा लगन सब अकबर समेचो कतल अठ जणा जख्मी थी पाया खैबर बरसा औरत जो रोड़ी केनाल में लाश हथ सुणप न थी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: हाय हाय हाय।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
7: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
8: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
10: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हाँ 2315525786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान में मौजूद फील्ड मार्शल सदास मुनीर जो ईरानी सदर मसूद पशकान स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबात परडेही वजीर अब्बास इलाकी से मुलाकातू जंग के खात्मे लाए तजवीजों तफसीली गालू ईरानी मीडिया मूजिब त मुलाकात दौरान खिते सूरतहाल के ख्याल की डेवट कई वही जंग के खात्मे वाले तजवीजन से तफसीली गाल बोल थी। मुलाकात दौरान वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी भी मौजूद हो कतरी वफद ब तेहरान में मौजूद।
2: Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries, you know, have interests, because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
1: Field Marshal Asim Munir san lagatar rabte mein aayo, umeed hai ta Iran san jald muahido tay thi vendo. America je pade wazir Marco Rubio Sweden mein saafin san galande cheva Tehran san muahido na thyo त पिलान बी भी मौजूद है मुआदो थो तो अब हुरमज खुली वो ईरान से डील असि पेरी तरजीह है। ईरान अमेरिका के मुतालबन के अमन गाल में सब का वही रंडक करार दे छो। ईरानी पटे वजीर अब्बास इराकची जो गडियल कौम के सेक्रेटरी जनरल से फोन से राबतो। अब्बास इराकची है
3: अमरीका
1: गोथरियत सफारती अमल जारी रखने जोर भर। कतरी वजीर आजम जो ईरानी परडेही वजीर अब्बास इराकी से फोन से राबतो। अमरीका ईरान में जारी गाल में थन्दड़ अगभराई से गाल कतरी वजीर आजम अब्बास इराकी से मसले जो हल गाल जरिए करने जोर भर। अब्बास इराकी सूरत हाल से उमान के हम मनसब से भी गाल बोल कई सफारती कोशिश से गौर विचार किया वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के टिन डी के सरकारी दौरे से बीजिंग पहुंची पो। एयरपोर्ट पहुंचने से वजीर आजम जिब चीनी अख्तियार आडो आदर भाव किया। वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम ए बिन से मुलाकातू कद पाक चीन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल अमरीका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड अहदे तक इस्तीफा दे छी। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर मुकर थल तुलसी 30 जून 2026 से अहदे छोड़ी। अमरीकी मीडिया मूजिब तुलसी ईरान जंग बाबत ट्रंप इंतजामिया का अलग मौकफ रखन्दी हुई। मेरिट से औरतन में पिंक स्कूटीज विराय रहा हूं। औरतन के तरबियत लाइसेंस ए मुफ्त में स्कूटीज दियो पा। हैदराबाद में औरतन के पिंक स्कूटीज देने वाली तकरीब के खिताब कन्दे सीनियर वजीर शरीर इनाम मेमुण चो तो सिंध हुकूमत वड़ा मनसूबा डिना है सूबे ए मुल्क की तरक्की लाए कम जारी रखासी। सीनियर सूबाई वजीर शरीर इनाम मेमुण हैदराबाद में 200 औरतन में मुफ्त पिंक स्कूटीज भी विरायूं। केपी बनुवारे इलाके में पुलिस ए सीसीटीवी जो ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारजी व्या केतरा ही जख्मी 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम डाकारा बनाया वो। पुलिस मूजिब कुछ इतलात सीसीटीवी से गड ऑपरेशन किया वो। ऑपरेशन दौरान एक पुलिस अहलकार शहीद एक जख्मी भी थो। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मंगसी सईद महमूद के अगवा में कराची वासी उमाद के मुलस होने शक जाहिर कर छो। डॉक्टर कादर मंगसी केटीएन न्यूज से गालाइंदे सईद महमूद की बाजियाबी ला कोशिशों वठण की बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है। सईद महमूद जो 2 महीना पैरां दिल जो बायपास थियो है संदस जिंदगी के खतरो है। सईद महमूद के कुछ ढीह पैरां मुबैना तौर से बलूचिस्तान में अगवा कर रो है। कैरपुर वेझो गोठाने जो अंबन के बाग में गलो कपियल लाश थ इतलाह पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस मूजिबि मक़तूल मोहम्मद रमज़ान फुलपोटो नेवीअ में मुलाज़िम आहे। वाक़िए बाबति वधीक जांच करे रहिया आहियूं। मीरपुर माथिलो भरिसां समे जा बिरादरीअ बिनजुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो मारिजी वियो। घोट मोहम्मद आलम चांडियो में ज़मीन जी मालिकी सां झेड़ो थियो। लठियूं ऐं सिरोटो लॻण सां अकबर समे जो क़तल थी पियो, अठ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ख़ैबर भरिसां औरत जो रोड़ी केनाल मां लाश हथ, सुञाणप न थी। तूल में ॻोठाणे खे उताक ते क़तल कंदड़ वडेरे जे पुट खे पुलिस गिरफ़्तार करण में नाकाम। मक़तूल ॻोठाणे अजमल उर्फ नौमान मेमन जिरादरे माज़ बाद तस्कीन। वाट्सअप मूजिबि वडेरे सईद अहमद सरकी जे पुट बिलाल सरकी नशे में नौजवान खे बंगले ते घुराए क़तल कयो। पुलिस बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न करे रही आहे। उड़ियो लाल भरिसां ज़रई पाणीअ लाइ खूह में बोरिंग कंदड़ ॿ ॼणा भित किरण सबबि दब थी विया। नींगर फौज हिकु ॼणो ज़ख़्मी। घोट गुलमोहन पंवर में खूह जी पकी सिरनि जी भित किरण सबबि नींगर साकिब अली बाटी दबजी फौत। हिकु ॼणे खे ज़ख़्मी हालत में ॿाहिरि कढी इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। खैरपुर ऐं बरपासे में गेस्टो ते ज़ाब्तो न आयो। ॿ ॿारड़ा फौत, 30 खां वधीक इस्पताल मुंतकिल। नींगर इकरार अली मरी ऐं इश्तियाक चंबाणी गेस्टो वगे फौत थी विया। 30 खां वधीक ॿार सिटी इस्पताल मुंतकिल। रवासियुनि पारां गेस्टो ते ज़ाब्तो आणण लाइ क़दम खणण जो मुतालबो। नवाबशाह में FIA जी कार्रवाई। हवाला में मुलिस SSP आफिस सांगड़ जो अॻूणो अकाउंटेंट गिरफ़्तार। FIA SSP आफिस सांगड़ अॻूणे अकाउंटेंट गुलाम सरवर जाप खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार वटां किरोड़ रुपया रोक रक़म, भारती गुटको, लग्ज़री गाॾियूं, ज़मीननि जा दस्तावेज़ ऐं ॿियो सामान हथ।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हाँ, बुड़ी 331525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

दोस्तो यो हर कोई मानू चवंदो आ त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया पर इने किसे जी की के शायद खबर न हुंदी त यो किए छो ए छो सडियो त जनी लाए मुआसी से कांधी न थिया आश्क वेचारो जड़ा बीमार छो यो किसो ता के आ सही करे तो बुधाया आश्क वेचारो जड़ा बीमार छो पंजे माइटन आई दोस्तन के चई तो मुखे पंजे महबूब जे मुल्क ते खणी हलो आ उते मरंदुस जो मुझो महबूब मुझो कुल्हे कांधी थी

አሁን ተሶ ቻምፒዮ ጀሙ ጀሙ ታማው ታዮታው ነገ ቻት የምንዱስ ወተ

0: किलो देर ना है दम जी किलो पर दम दियन जी अबासी मुझा सजन।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ईरान ऐं अमरीका में सरचाव लाइ पाकिस्तान जूं टाकड़ी वारी कोशिशूं तेज़। तेहरान में मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिफाफ ऐं परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची सां मुलाक़ातूं। जंग जे ख़ात्मे लाइ तजवीज़नि तफ़सीली ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मौजूद मुलाक़ातनि दौरान ख़िते जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे-वठि कई वई। जंग जे ख़ात्मे वारनि तजवीज़नि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी। मुलाक़ातनि दौरान वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी बि मौजूद हो। क़तरी वफ़द बि तेहरान में मौजूद। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान जो दौरो मुकमल करण बाद चीन रवानो थींदो।
1: Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries have interests, because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, we are in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां लगातार राब्ते में आहियूं। उमीद आहे त ईरान सां जल्द मुआदो तय थी वेंदो। अमरीका जे परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो स्वीडन में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त तेहरान सां मुआदो न थियो त प्लान बी बि मौजूद आहे। मुआदो थियो त अपना हरमुस खुली वेंदो। ईरान सां डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे। ईरान अमरीका जे मुतालबनि खे अमन ॻाल्हियुनि में सभ खां वधीक रंडक करार ॾेई छॾियो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची जो गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल सां फोन ते राब्तो। अब्बास अराग़ची चयो त अमरीका माज़ी में अधूरनि वाइदनि ऐं फ़ौजी हमलनि ज़रिए सिफ़ातकारी खे नुक़सान पहुचाईंदो रहियो आहे। तेहरान पाकिस्तान जी सालिसी में अमन ॻाल्हियुनि में संजीदगी सां हिसो वठी रहियो आहे। एंटोनियो गुतरेस सिफ़ारती अमल जारी रखण ते ज़ोर भरियो। कतरी वज़ीर आज़म जो ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची सां फोन ते राब्तो। अमरीका ईरान में जारी ॻाल्हियुनि में थींदड़ अघ भराई ते ॻाल्हियूं। कतरी वज़ीर आज़म अब्बास अराग़ची ते मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढण ते ज़ोर भरियो। अब्बास अराग़ची सूरतहाल ते ओमान जे हमनसब सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। सिफ़ारती कोशिशुनि ते ग़ौर कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ 6 ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुची वियो। एयरपोर्ट पहुचण ते वज़ीर आज़म जो चीनी इख़्तियारनि आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म चीनी सदर वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाक चीन लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। अमरीका जे नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तल्सी गेबार्ड उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौरु मुक़ररु थियल तुलसी गेबार्ड 30 जून 2026 ते उहिदो छॾींदी। अमरीकी मीडिया मूजिबि तुलसी गेबार्ड ईरान जंग बाबति ट्रंप इंतज़ामिया खां अलॻि मौक़िफ़ रखंदी हुई। मेरिट ते औरतुनि में पिंक स्कूटीज़ विराई रहिया आहियूं। औरतुनि खे तरबियत लाइसेंस ऐं मुफ़्त में स्कूटी ॾेई रहिया आहियूं। हैदराबाद में औरतुनि खे पिंक स्कूटीज़ ॾियण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो त सिंध हुकूमत वॾा मनसूबा ॾिना आहिनि। सूबे ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ कम जारी रखंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद हैदराबाद में 200 औरतुनि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ बि विरायूं। केपी बन्नू वारे इलाइक़े में पुलिस ऐं सीटीटी जो ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। 10 किलो वज़नी देसी साख़्ता बम नाकारा बणायो वियो। पुलिस मूजिबि गुझे इतलाउ ते सीटीटी सां गॾु ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन दौरान हिकु पुलिस अहलकार शहीद ऐं हिकु ज़ख़्मी थियो। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादिर बख्शी सईद मेमण जे अगवा में कराची वासी अमाद जे मुलविस हुअण ते शक ज़ाहिर करे छॾियो। डॉक्टर कादिर बख्शी केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सईद मेमण जी बाज़ियाबी लाइ कोशिशूं वठण जी बुनियादी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत जी आहे। सईद मेमण जो 2 महीना पहिरें दिल जो बाईपास थियो आहे। संदसि ज़िंदगी खे ख़तरो आहे। सईद मेमण खे कुझु ॾींहं पहिरियां मुबैना तौर बलोचिस्तान मां अगवा कयो वियो हो। खैरपुर वेझो गोठाणे जो अंबनि जे बाग मां गलो कपियल लाश हथ। इतलाउ ते पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस मूजिबि मक़तूल मोहम्मद रमज़ान फुलकोटो नेवी में मुलाज़िम आहे। वाकिए बाबति वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
2: ईद आ रही है, हमारा मिलना जरूरी था।
3: लोग सिर्फ गोश्त की बात करते हैं, सॉस का क्या प्लान?
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GAFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
10: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हाँ, बुड़ी 331525786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
6: 90.4. के मैंने बुधवार वारन के डिसेंड वारन के इम्पार्ट कयूं आया जितना थी सगन उन्हें जा पॉसिबल सॉल्यूशंस उन्हें के कटी दी हुए सुटी एडवाइस दी उन्हें के
7: बिल्कुल ही है शहबाज साहब आई तवा जी का ये पथरीन वारी ता मिसाल नी या जे नॉलेज यस ए ही है असन जा जे ऑडियंस का वो तवा जी नॉलेज ता तमाम घणा मुंतजर हुंदा है. इवन मुडी व्हाट्सएप ते मैसेजेस इन नाइन ता ये प्रोग्राम जे को आए ता सा के रिकॉर्डिंग मोकली है.
6: थैंक यू वेरी मच.
7: मा उन्हें के चिंगा ते अगर ता खा जी असल में उन्हें जे के फीडबैक शामिल थी ना वो बुधन चाहिंदा हुंदा है. पो उन्हें के मुयो चया ते फेसबुक ते असा जो प्रोग्राम पयो हुंदा है एज वेल एज YouTube ते भी पयो हुंदो आहे
6: पॉडकास्ट
7: जी. यस आई हु यू भी फीडबैक देन पया त असा बार बार बुधंदा आयो शहबाज साहब जो गलहण असा के डाटो
6: वणंदो मेहरबानी. मखे एकडो ता जो आईडियो तमाम सठो लगो
7: त
6: इन फ्यूचर वी विल बी डूइंग दिस शो इन उर्दू. असा सिर्फ अगर एकडी असन जी सिंधी कम्युनिटी आहे त असन एकडो एकडो पर्टिकुलर सेक्शन भी असन के कवर करनो पर इन फ्यूचर वी विल बी कवरिंग इंशाल्लाह इन उर्दू एंड सिंधी. असा इन बिनन के कैरी ऑन कंदा से
7: इंशाल्लाह
6: के वर्कआउट कंदा से वर्कआउट का पो इंशाल्लाह अगर जो प्रोग्राम बिठो तो पो इनके सा कन्वर्ट करे छदा से प्रोग्राम की.
7: बिल्कुल. अच्छा शहबाज साहब टॉपिक की तरफ अचो पया सिंध रेंट प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड इन तरफ अचण का पेरा अहां सब का पेरा बुधायो तो पर्पस छ है न जो ही ऑर्डिनेंस जो त पाकिस्तान में जो आयो न जो पर्पस छ हो
6: बाबर. बिफोर दिस ऑर्डिनेंस 1979 सिंध ऑर्डिनेंस का पेरो सिंध रेस्ट्रिक्शन अर्बन रेस्ट्रिक्शन एरी प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस हों उन ऑर्डिनेंस में ऑल ऑफ सडन जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थो रेंट पैंजी मर्जी ते वता वेंदा हुआ. हर प्रेमिसिस जा अलग अलग रेंट हुंदा हुआ. कुछ प्रोविंसिस में मानुन के रहन जी जगह मिलंदी कुछ उनके न मिलंदी. हर एरिया जा एकड़ा अलग अलग रेंट्स जेको न ते थी व्या. एकड़ो पर्टिकुलर माना एकड़ो एड़ो क्राइटेरिया न हुयो जेते मानु को रेंट फिक्स करे सके जेमे टेनेंट के भी बेनिफिट मिली सके लैंडलॉर्ड के भी लैंडलॉर्ड के भी जेको न उन में बेनिफिट मिली सके. सो सिंध रेंट प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस या असन जे चौं रेंट प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस जो मेन सोल पर्पज यो हो कि टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट के उन्हें विच में एक अड़ो बैलेंस क्रिएट क्यों कि एज पर एग्रीमेंट न हो एक बे के इलीगल एवेक्शन करे सगन न एक बे जो मतों केसेस करे सगन न उन्हें बेसिक नेसेसिटीज कोई बंद करे सके. प्लस में एक स्मूथ ए फ्रेंडली जो एग्रीमेंट हों बिन्न जो जे सा पीसफुल पोजिशन ए पीसफुल इवेक्शन जी थी बिन्न की वह भी कैरी ऑन थी सके. सो द पर्पज ऑफ होल पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वॉज टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड.
7: All it. अच्छा अंडर दिस ऑर्डिनेंस जो आए थे टेनेंट लैंडलॉर्ड एंड रेंट प्रीमिसिस रेंट कंट्रोलर इन जी लीगल डेफिनेशन असांके
6: लीगल डेफिनेशन मां ये समझाइंदुम. लैंडलॉर्ड इज अ पर्सन हु इज अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु वांट्स टू लेट आउट हिज प्रॉपर्टी टू समवन जेके सा चनो मन वांट टू लेट आउट डिमाइस प्रीमिसिस और प्रीमिसिस जो चाहे प्रीमिसिस माना जगह. ठीक है. टेनेंट जो मतलब है पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी या टू होम द प्रेमिसिस या प्रेमिसिस या बिल्डिंग इज गिवन ऑन द रेंट जेके किराए ते मसवाड़ ते जगह डिनी थी वे उनके साथ टेनेंट चवंदो. कंट्रोलर इज अ पर्सन जेको फियर रेंट

0: अञा ईंदा सीं हिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ॾिसंदा सीं रोल ॾिसंदा सीं हिन जो छा आहे हुन खां पहिरियां असां इन ते ॻाल्हाइण चाहींदासीं त वर्बल रेंट एग्रीमेंट ऐं लीगली अच्छा वर्बल रेंट एग्रीमेंट हिकिड़ो थींदो आहे त बाबा ठीकु आहे पहिरीं खां जेको आहे त किरायो वठजां ठीकु आहे ऐं हिकिड़ो वरी रिटन में थींदो आहे वर्बल जेको रेंट एग्रीमेंट आहे हुनजी लीगली केतिरी इम्पोर्टेंस आहे
1: वर्बल बि क़ाबिल क़बूल आहे बाबर वर्बल बि जी बि सेम अहमियत आहे जेतिरी रिटन जी अहमियत आहे प्रोवाइडेड दैट के कॉम्पिटेंट जो हुन में विटनेस अवेलेबल हुजनि कॉम्पिटेंट विटनेस बि वर्बल में बि कॉम्पिटेंट विटनेस हुजनि ज़रूर अगरि कॉम्पिटेंट विटनेसिस बि आहिनि ऐं किरायेदार ऐं मकान मालिक जे विच में अगरि को रेंट ते पाए थिए थो पियो या कोई बि हुन जे विच में हिकिड़ो एग्रीमेंट थिए थो जेके असां टीनेंसी एग्रीमेंट चवंदा आहियूं अगरि को हुनखे प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड पंहिंजी प्रॉपर्टी मकान मालिक प्रॉपर्टी आहे शॉप आहे कुझु बि अगरि ॾियणु चाहे थो पियो त हिकिड़ो रेंट एस पर लोकेलिटी जे हिसाब सां जेको लोकेलिटी में रेंट हले थो उहो ई हुनखे जेको उन ई रेंट ते हुनखे मसवाड़ ते उहा जॻह ॾियणी पवंदी
0: मतिलब वर्बली तव्हां सम्झो पिया त जेको रेंट
1: इहो
0: आहे हिन में तव्हांजे साम्हूं अहिड़ा केसिस न आया आहिनि त हिन में मतिलब वर्बली त ठीकु आहे माण्हू ॻाल्हाए छॾंदो आहे पोइ हिन में कुझु कन्फ्यूजन न हूंदी आहे तव्हां एतिरा न चया हुया एतिरा पैसा चया हुया
1: बसि दिस इज़ बिग डिफरेंस रिटन में छा आहे त रिटन में अगरि वंस अ कॉन्ट्रेक्ट इज़ रिटन हुन में तव्हां टर्म्स एंड कंडीशन कैटेगोरिकली तव्हां लिखी छॾी वञ स्पेसिफिकली तव्हां मैंशन थियल आहिनि हुन में डेट बि मैंशन थियल आहे त हिन सां महीने खां वठी करे मंथ जे आख़िरी महीने ताईं दे विल बी अवेलेबल हेयर हुन खां पोइ अगरि हे चाहिनि त असां सां गॾु नोवेशन करे सघंदा नोवेशन जो मतिलबु आहे टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रेक्ट की असां सां न्यू कॉन्ट्रेक्ट या न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट असां सां कैरी ऑन करे सघनि था हाणे उन में छा थींदो आहे त उन में जेके असां टसल चवजे प्रॉब्लम्स चवजे इशूज़ चवजे उन में लिटिगेशन थियण जा चांसिस तमामु घटि थी वेंदा आहिनि वर्बल में लिटिगेशन थियण जा चांसिस वधी वेंदा
0: आहिनि
1: सपोज़ हाणे लैंडलॉर्ड हिकिड़ो किरायो चए थो मां हिन पर्टिकुलर जॻह जो किरायो तव्हां खां 15,000 वठंदुमि हाणे हुन ते एडवांस बि 50,000 एडवांस बि ॾेई छॾियो जॾहिं किरायेदार शिफ्ट थियो शिफ्ट थियण खां पोइ चयो अथई मां तव्हांखे चयुमि 20,000 हाणे हुन चयो अथई तव्हां 20,000 चयो ई न हुयो तव्हां त मूंखे 10,000-15,000 चयो हुयो हाणे इते थियो कॉन्फ्लिक्ट सो हिन कॉन्फ्लिक्ट खां बचण लाइ सभिनि खां बहितर इहो आहे त वर्बल जी पंहिंजी अलॻि हैसियत आहे बहितर आहे माण्हू एग्रीमेंट कराए वठे उहो बि रिटन फॉर्म में प्लस में हिनखे रजिस्टर बि कराए छॾे ऐं हिकड़ी कॉपी कंसर्न हद जे रेंट कंट्रोलर वटि बि प्रोवाइड करे छॾे त हे जॻह मसवाड़ ते वई आहे
0: ऑलराइट अच्छा हाणे असां रेंट कंट्रोलर जी तरफ़ अचूं था रेंट कंट्रोलर जो रोल छा आहे ऐं कहिड़ी सूरत में जेको आहे त रेंट कंट्रोलर जेको आहे त कहिड़ा केसिस हैंडल करे सघे थो
1: रेंट कंट्रोलर ईअं चओ त असां ईअं चओ जीअं मां ईअं सम्झायां तव्हांखे की रेंट कंट्रोल इज़ अ जज उहो हिकिड़ो सिविल जज आहे जेके हिकिड़ा विद इन रेंट ऑर्डिनेंस में हिकिड़ा पावर ॾींदा आहिनि त तव्हां रेंट मैटर सां जेतिरा बि रिलेटेड इशूज़ आहिनि हुनखे तव्हां टेकल डाउन कयो सो रेंट कंट्रोलर इज़ बेसिकली एज़ अ जज दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोफेशनल गवर्नमेंट सीनियर सिविल जज हुजे जीअं मां तव्हांखे ॿुधायमि उहो सिविल जज जंहिंजी एटलीस्ट जॉब में जेकी आहे न एक्सपीरियंस 3 सालनि जो हुजे हाणे इन जो मेन पर्पज़ छा आहे रेंट कंट्रोलर जो मेन पर्पज़ इहो आहे सभ खां पहिरियों फेयर रेंट डिसाइड करे कंहिं बि प्रेमिसिस में फेयर रेंट आहे कंहिं बि लोकेलिटी में अगरि रेंट हद खां वधीक न हुजे मां मिसाल वेठा तव्हांजी हिन बिल्डिंग जो जंहिं बिल्डिंग में असां अवेलेबल आहियूं हाणे हिन बिल्डिंग में सभु घर हिकु जहिड़ा आहिनि हिन बिल्डिंग में सॼी जॻहियूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि ठीकु आहे अगरि सपोज तव्हांजे हिन फ्लोर जो अगरि कोई किरायो तव्हां खां 25,000 वठे ऐं साम्हूं वारे फ्लेयर जो किरायो जेको फ्लोर जो किरायो आहे या घर जॻह जो किरायो उहो 30,000 वठे हाणे हिते डिफरेंस अची वियो इहो फेयर रेंट न थियो अगरि इन सिलसिले में चाहियो त अगरि उन जेका 30,000 किरायो वरितो थो वञे उहो रेंट कंट्रोलर ॾे एप्लीकेशन ॾेई करे उहो किरायो हुन खां 25,000 ते वापसि खणाए सघे थो छो त सर विद इन प्रेमिसिस में सॼी बिल्डिंग में जॾहिं किरायो 25,000 आहे त मूंखां 30,000 छो थो वरितो वञे
0: अचूं तव्हां जीअं असां हिन जी रोल ते ॻाल्हायूं पिया रेंट कंट्रोलर जे जॾहिं रेंट एग्रीमेंट थिए पियो टेनेंट एंड हुनजे लैंडलॉर्ड जे विच में त छा हुन एग्रीमेंट महिल बि रेंट कंट्रोलर ॾे वञणु घुर्जे या जस्ट तव्हां एग्रीमेंट कयो अगरि हुनजी को ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे पियो अगेंस्ट वञे पियो त पोइ रेंट कंट्रोलर ॾे
1: मां जीअं चयुमि हाणे तव्हांखे ॿुधायमि त रेंट एग्रीमेंट अगरि तयार थिए थो रेंट एग्रीमेंट सभ खां पहिरियों तव्हां मेकआउट कयो रेंट एग्रीमेंट खे रजिस्टर्ड करायो रजिस्टर्ड करण खां पोइ हिकड़ी कॉपी तव्हां रेंट कंट्रोलर वटि बि जमा करायो रेंट कंट्रोलर उन ई हद जो जुरिसडिक्शन जो जंहिंमें इमूवेबल जेके प्रेमिस चवंदा आहिनि उहा प्रॉपर्टी अवेलेबल हुजे उन सां छा थींदो त अगरि इन फ्यूचर अगरि को केस वग़ैरह थिए थो त उहा कॉपी हुननि वटि ऑलरेडी पई हूंदी जंहिं सां एज अ रेंट कंट्रोलर जी हैसियत में असां तव्हांखे इहा कॉपी प्रोवाइड कयूं था इन फ्यूचर कॾहिं अगरि अहिड़ो को मामिलो लिटिगेशन जो अची वञे त तव्हांखे ऑलरेडी ख़बर हुजे त इहो मामिलो असां ॿिनि पार्टीज़ जे विच में आहे
0: ऑलराइट

0: अच्छा इहो जेको आहे त डिस्प्यूट अगरि थिए पियो हिन विच में त रेंट कंट्रोलर खां अलावा सिविल कोर्ट बि माण्हू वञी सघे थो या रेंट कंट्रोलर
1: इहे अथॉरिटी सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ इहे एक्सक्लूसिव पावर रेंट कंट्रोलर खे ई आहिनि जेतिरा बि रेंट सां इशूज़ हूंदा आहिनि रेंट कंट्रोलर हलाईंदो या त समरी बेसिस ते असां हिन खे समरी बेसिस चवंदो या समरी बेसिस ते केस हलाईंदो या फुल फ्लेज बेसिस ते केस हलाईंदो समरी बेसिस ते हूंदो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम केस खे डिसाइड करणो हूंदो आहे कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें एविडेंस ऐं प्लस में डिटेल्ड जंहिंमें क्रॉस एग्ज़ामिनेशन थींदी डब्ल्यू एस रिटन स्टेटमेंट बि अची वेंदी शू फ्रेम बि थींदा उन खां पोइ एट डिटेल एविडेंस बि हलंदी शाहिद बि ईंदा उहो फुल लेंथ बि केस हली सघे थो ऐं समरी बेसिस ते बि केस हली सघे थो
0: अच्छा हाणे तव्हां इहा थोरी मिसाल ॾिनी फ्लोर वारी पंजवीह ऐं टीह हज़ार वारी इन तरह मुंहिंजो ध्यानु हलियो वियो त रेंट फिक्सेशन जेकी आहे थिए पई इन जो थोरो असांखे ॿुधायो त अंडर दिस ऑर्डिनेंस कीअं करे सघिजे थी ऐं सेकेंडली अगरि को डिस्प्यूट करे पियो को इन जे अगेंस्ट वञे पियो उन जे लाइ कहिड़ो प्रोसेस आहे
1: फेयर रेंट जो पर्पज़ ई सिर्फ़ इहो ई आहे त कोई बि जॻह आहे कंहिं लोकेलिटी में आहे हाणे हिन खे मिसाल था वठूं तव्हां हॉस्टल्स ॾिठा हूंदा जीअं अगरि तव्हां सखर में असां रहूं था त अगरि तव्हां पंहिंजो आई बी ए जी तरफ़ वेंदो त हिते हॉस्टल्स इलाही आहिनि त हिते जॉइंटली बि छोकिरा रहनि था पिया इंडिविजुअल बि रहनि था पिया हाणे हुते सॼा सॼा बंगला ठहियल आहिनि हाणे उहो बंगलनि जे हिसाब सां उन जो हिकिड़ो रेंट फिक्स आहे
0: सही
1: कंहिंजो मिसाल टी अगरि हिकिड़ी प्रेमित हिकु घिटी आहे हिकिड़ी गली आहे सर्कम स्टेसिस ऐं उन जा जेकी रोड आहे रस्ता त साॻिया ई आहिनि बिल्डिंगूं बि तक़रीबन ईअं सम्झो हिकु जहिड़ियूं आहिनि हाणे किथे टी हज़ार रेंट थी वञे किथे पंटीह हज़ार रेंट थी किथे चालीह हज़ार रेंट थी वञे त उन मां कोई बि टेनेंट वञी करे इहो क्लेम करे सघे थो रेंट कंट्रोलर वटि त लैंडलॉर्ड असां खां ज्यादा किरायो छो थो वठे जॾहिं त पूरो रेंट पूरी प्रेमिस जो पूरे एरिया जो रेंट टीह हज़ार आहे असां खां चालीह हज़ार छो था वता वञनि उन में उन जे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दाखिल कंदा रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर उनखे छा कंदो बाबंद कंदो त किरायो तव्हां वापसि पंजवीह हज़ार खणी अचो टीह हज़ार ते वापसि खणी अचो छो त ऑलरेडी पूरी प्रेमिसिस में पूरी जी पूरी एरिया में किरायो सिमिलर बेसिस ते हुजे
0: ऑल राइट
1: बिल्कुल
0: अच्छा ही ऑर्डिनेंस अगरि रेंट ते मूंखे थोरो ध्यानु वरी ॿिए तरफ़ ही जेको होटल्स वग़ैरह ते रूम बुक कराईंदा आहिनि उते बि जेको आहे पंहिंजी मनमानी आहे जेके रेट्स वठां ही ऑर्डिनेंस उन्हनि
1: लागू
0: मतिलबु वठी सघनि
1: था हिकिड़ी पंहिंजी यूनियन
0: ऐं ही हॉस्टल वारा जेके
1: आहिनि हॉस्टल वारा इन करे अचनि था त छोकिरा रहनि था पिया रहनि था मंथली बेसिस ते किरायो ॾियनि था उन्हनि जो एग्रीमेंट ठहे थो असां जॾहिं मिसाल कंहिं हिकिड़े पार्टिकुलर सिटी में वञूं था उते असां उन्हनि सां को मुआदो लिखत में नथा ॾियूं पिया जॻह मिसाल जंहिं जॻह में माण्हू रहनि था पिया जेके उते अचनि था स्टे करनि था ठीकु आहे उहे उन सां बाउंड न आहिनि पर जंहिंजी प्रॉपर्टी आहे जंहिंजी प्रॉपर्टी आहे उहो बाउंड थी सघे थो पियो त इन पूरे एरिया में जेतिरो बि किरायो हूंदो उहो हिकिड़ो ई हूंदो
0: ठीकु आहे अच्छा प्रोसेस तव्हां जीअं ॿुधायो त अगरि वधीक रेंट वठे पियो त कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर ॾे वञणु घुर्जे एप्लीकेशन खणी वञणु घुर्जे केतिरनि ॾींहनि में इहो प्रोसेस थी वेंदो ऐं केतिरनि ॾींहनि में हू जेको आहे त हुनखे लैंडलॉर्ड खे पाबंद बणाईंदा त बाबा तव्हां जेको आहे रेंट ओतिरो ई वरितो जेको हले पियो
1: कुझु मां छा चयुमि समरी बेसिस ते कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि की अगरि उन में अगरि मेलाफाइड शो थी थो वञे के लैंडलॉर्ड इंटेंशनली किरायो वधाए करे ऐं जेको न सभिनि सां बेमानी करे थो ऐं पंहिंजी जॻह जी किरायो वधाए थो जॾहिं त लोकेलिटी में उहो किरायो न आहे अगरि उहो प्रूव थो थी वञे त विद इन टीह ॾींहं बि काफ़ी आहिनि न त विद इन चार खां पंज महीननि में या छह महीननि में सॉर्ट आउट करे उहो किराए खे वापसि उन जी पोज़ीशन ते खणी वेंदो
0: अच्छा हाणे हिन सिचुएशन में तव्हां छा रिकमेंड कंदो उन्हनि खे जेके सम्झनि त बाबा ठीकु आहे असां खां रेंट वधीक वरितो वञे पियो हाली फ़िलहाल त जॻह वठूं वधीक रेंट में पोइ असां बाद में वञी करे रेंट कंट्रोलर ॾे वञूं या हू वेट करनि रेंट कंट्रोलर ॾे वञी करे पोइ वञी जॻह वठनि
1: थींदो ईअं ई आहे अमूमन थींदो ईअं आहे त असांखे अॻु में ख़बर न हूंदी आहे असां न स्क्रूटनी कंदा आहियूं न असां पुछा कराईंदा आहियूं असां सोचंदा रेंट ते जॻह खपे कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके डिटेल वठंदा आहिनि अगरि सपोज के अगरि कंहिं माण्हू खे मसवाड़ ते जॻह खपे या कंहिं हुनखे मसवाड़ ते जॻह ॾियारे छॾी ऐं विच में उहो पंहिंजो हिकिड़ो रोल प्ले करे मीडिएटर जो रोल प्ले करे उहो पंहिंजो अमाउंट वठी हलियो वियो हाणे जॾहिं तव्हां शिफ्ट थियो तव्हांखे बाद में ख़बर पई त बाबा मां किरायो हिन शइ जो सपोज़ हिकिड़े सम में थो ॾियां ऐं ॿियो माण्हू हिन जो किरायो हिकिड़े ॿिए सम में थो ॾिए पियो त उन खां पोइ उहो हिकिड़े लैंडलॉर्ड खे पहिरियों नोटिस मोकिलंदो लैंडलॉर्ड खे चवंदो साईं हे जेकी तव्हां जेकी जॻह ॾिनी आहे मकान मालिक तव्हां मूंखे जॻह ॾिनी आहे कंपेरेटिवली हिन साॻी लोकेलिटी में एरिया में असांजा ॿिया माइट बि रहनि था उहो त एतिरो किरायो नथा भरनि तव्हां असां को किरायो एतिरो छो था वठो. सपोज़ अगरि मुंहिंजा रिलेटिव ॿ स्टोरी बिल्डिंग में रहनि था, मां बि ॿ स्टोरी बिल्डिंग में रहां थो, ठीकु आहे, लोकेलिटी में कोई फ़र्क़ु न आहे. त पोइ तव्हां मूंखां हिकिड़ो पर्टिकुलर अमाउंट था वठो, हुननि खां पर्टिकुलर अमाउंट था वठो. अगरि हो हिन ॻाल्हि ते मञे थो, ठीकु आहे, मां तव्हांजो किरायो हुते खणी ईंदुमि. अदरवाइज़ उहे माण्हू उनजो रेफरेंस वठी करे रेंट कंट्रोलर खे रेफरेंस करे, साईं इन लोकेलिटी में हे चार पंज घर आहिनि जंहिंजो किरायो एतिरो ई आहे, मकान मालिक साॻियो ई आहे, पर मूंखां वधीक थो वठे, हुननि खां घटि थो वठे.
0: ओके ओके जी. मतिलबु हू हाली रेंट ते रहण शुरू करे छॾनि, विच में
1: एप्लीकेशन ॾिसो न, ख़बर न पवंदी आहे कॾहिं ख़बर, जी ख़बर पए, स्क्रूटनी कंदासीं ख़बर पवंदी, या असां छा कंदा आहियूं त तकड़ि में रही वेंदा आहियूं, रहण सां पोइ ई असांखे ख़बर पवंदी आहे हिनजो किरायो छा हुयो.
0: अच्छा, कॾहिं कॾहिं जेको आहे न, हिन ते इहो बि थींदो आहे त वधीक ऑफर बि ॾिनी वेंदी आहे लैंड लॉर्ड खे, तयार हिनखे न ॾिजां, मूंखे ॾिजां, मां 5,000 अञा वधीक ॾींदोमांइ. जेको आहे त अनजस्टिस जेको आहे
1: असल में छा वजह छा आहे, डिपेंड करे थो एरिया टू एरिया. हाणे सपोज़ मां जंहिं एरिया में रहां थो, अनफॉर्चुनेटली
0: जी,
1: पर मुंहिंजो त एरिया पाड़ो त नबिन खे बि प्यारो हूंदो, पर अगरि मां ईअं चवां अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सां उते लाइ लोड शेडिंग 12-12 कलाक आहे, 13-13 कलाक लोड शेडिंग आहे. ट्रांसफार्मर अगरि फाटी थो पए त कोई ज़हमत नथो करे हुते अचण जी, ठीकु आहे. सो अगरि मां उन हिसाब सां अगरि चवां त अगरि कोई मूंखे रेंट ते अगरि कोई चए मां हिन एरिया में तव्हां रेंट ते रहण थो अचां, मां हुनखे चवंदुमि 10,000 वधीक भरे ॿी जॻह ते हलियो, हेॾे न ईंदे. छो डिपेंड करे थो एरिया जे मथां. अगरि कोई माण्हू 10,000-5,000 वधीक ॾेई करे चए थो मां सुठी इन्वायरमेंट में रहां, त हुन में को हर्ज न आहे. अगरि अननेसेसरी को रेंट वधाए थो, अननेसेसरी हुननि जे लाइ आहे, अननेसेसरी को रेंट वधाए थो इलीगल तरीक़े सां, हुन जे मथां इहो कानून लागू थी वेंदो.
0: बिल्कुल, हिन में ऑर्डिनेंस में जेको आहे सेक्शन 8 में रेंट इंक्रीज रेगुलेशन बि आहे.
1: हिन
0: ते पाण ॻाल्हाईंदासीं पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हलंदासीं. सो लिसनर्स, प्रोग्राम जारी आहे. लीगल कॉर्नर में बाबर शेख हवा सां गॾु आहे, मूंसां गॾु एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि. ऐं टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हांजा सवाल हुजनि, या हिन खां अलावा तव्हांखे का लीगल कंसल्टेशन घुर्जे, त लाइव वेठा आहिनि शहबाज़ साहब, तव्हां हिननि खां पुछी सघो था. फ्री ऑफ कॉस्ट तव्हांखे जेको आहे लीगल एडवाइस ॾींदा, अॼु जी तव्हां खां फी न वरिती वेंदी. ऐं असांजो नंबर आहे 0300-1-3488. सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं, असां सां गॾु रहिजो.
2: कारोबारी हज़रात के लिए खुश
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज.

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम शानदार नमाज जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 650 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: बेमिसाल लोगों के लिए बेमिसाल ऑफर, अब हफ्तावार बेमिसाल प्लस ऑफर के साथ मिले 5 GB डेटा और 10 रुपए के लोड में। अभी डायल करो *9
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 650 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ठीक हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हाँ 2131525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदार कंदो अथसि, वॾेरो हुते वेठो
1: हुयो
0: टे लॻी त हिते रस्ते में साह ॾिनई
2: त वॾेरा माण्हुनि सां भाषा आहिनि, पर पोइ इन फायर थी आहे, इन खे लॻी
1: आहे। हेठि पिस्टल साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां ॿुधो?
3: बसि बीठो न अमीराणो ॿार हो, पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर आहे।
0: हादसो थी रहियो आहे, बिलाल खान ते कराईंदा।
4: कुल भरिसां वॾेरे जे पुट हथां क़तल थियल पोरीअ जो केस पुलिस पारां लोड़ण जूं तयारियूं। पुलिस पोरीअ ते गोलियूं हलाईंदड़ वॾेरे जे पुट बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न कयो। पुलिस वाकिए जी अणधुरी जांच करण बदिरां वॾेरे बिलाल सरकी जी वंगार वहण लॻी। पुलिस चौकीदार अजमल जे क़तल खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस मक़तूल वॾेरो बादशाह माण्हू आहे, बस गोली हली वई। नौजवान खे टे गोलियूं लॻियूं आहिनि, बस इतफ़ाक़ थी वियो आहे। कैरपुर जिले अंदर एचआईवी में खतरनाक हद ताईं वाध। गंबट जी गिम्स अस्पताल बि एचआईवी मरीजनि जो गढ़ बणजी वई। अस्पताल अमले जे ॿिनि माण्हुनि समेत 25 ॼणनि खे एचआईवी जी तस्दीक, हिक निगरी हयाती विञाए चुकी। सिहत खाते जो चवण आहे त गुज़िरियल हफ़्ते खां अॼु ताईं एचआईवी जा 25 नवा अटाल जी आइसोलेशन वार्ड में दाख़िल कयो वियो आहे, जिते हिक निगरी फोत थी वई। सिहत अख़्तियारनि मूजिबि गिम्स अस्पताल जी ॿिनि नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल अमले जे माण्हुनि में बि एचआईवी ज़ाहिर थियण बाद अस्पतालनि में इन्फेक्शन कंट्रोल ऐं गैर महफ़ूज़ तिबी तरीक़नि बाबति ख़दशा वधी विया आहिनि। ॿिनि महीननि दौरान 125 केसिस रिपोर्ट थी चुका।

अमरीकी परडेही वजीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु अगभराई थी आहे। उमीद त ईरान जंग जे ख़ात्मे वारो वाइदो अॼु क़बूले वठे। थी सघे थो त अॼु सुभाणे या कुझु ॾींहनि बाद असां वटि ऐलान लाइ कुझु हुजे। हुन खां अॻु मार्को रूबियो चयो त फील्ड मार्शल सां लगातार राब्ते में आहियूं, ईरान सां जल्द वाइदे जी उमीद आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, DAFM 90.0।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM
2: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
5: सुनते रहो GAFM 90.4।

निज़ाम खे बिना रंडक जारी रखण वारी अहमियत ते बि ज़ोर ॾिनो वियो। कतरी वज़ीर आज़म जो ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची सां फोन ते राब्तो। अमरीका ईरान में जारी ॻाल्हियुनि में थींदड़ अखबराई ते ॻाल्हियूं। कतरी वज़ीर आज़म अब्बास इराकची ते मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढण ते ज़ोर भरियो। अब्बास इराकची सूरतयाल ते उमान जे हमन सभ सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। सिफारती कोशिशनि ते ग़ौर कयो वियो।

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के चइनि ॾींहनि जे दौरे जे पहिरें मरहले में हांगज़ू पहुची वियो। वज़ीर आज़म जी हांगज़ू शहर में चीनी सूबे ज़ी जियांग जी पार्टी सेक्रेटरी सां मुलाक़ात। मिस्टर वांग हाऊ वज़ीर आज़म खे सूबे में अचण ते भलीकार चयो। वज़ीर आज़म पारां चीन जी ज़ी जियांग जे तरक़ियाती मनसूबनि जी साराह। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान सूबे ज़ी जियांग सां सहकार खे हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। تحفظ اعلیٰ معیاری معاشی ترقی کے اگتے ودائے سکجے تو۔ وزیر اعظم دورے دوران چینی صدر ائیں بین سا اہم ملاقاتوں بھی کندو۔

0: ਹੱਦ ਬਸੀ ਵਿਆ ਵੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜੀ ਉਤਾ ਕਤੇ ਉਤੇ ਵਡੇਰੋ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜੇ ਬਾ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕੰਦੋ ਤਸ ਵਡੇਰੋ ਉਤੇ ਵੇਠੋ
1: ਅਣੀ ਕੋਲੀ ਲਗੀ ਤਾਈ ਬਾ
0: ਟ੍ਰੇਨ ਲਗੀ ਤੇ ਇਤੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਸਾਹ ਦਿਨ ਤਬ ਵਡੇਰਾ ਮਾਨੋਂ ਪਾ ਬਾਸ਼ਾਨ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਰ ਥੀਆ ਇਹਨੀ ਲਗੀ ਆ
1: ਗੇਟ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਸਾਫ ਥਿੰਦੋ ਆ ਕਦੀ ਤਾਂ
2: ਬਸ ਬਿਠੋ ਨਾ ਮੀਰਾਨੋ ਬਾਹਰੋ ਪਾਣ ਕੇ ਕੀ ਸਾ ਖਬਰ
0: ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸੋ ਸੀ ਜਲਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਾਇੰਦਾ
3: थुल भरसा वडेरे जे पुट अथा कतल थियल पोरीअ जो केस पुलिस पारां लोड़ण जूं तयारियूं पुलिस पोरीअ त अजमल मेंबर ते गोलियूं हलाईंदड़ वडेरे जे पुट बिलाल सरकी खे पुलिस वाकिए जी अणधुरी जांच करण बदिरां वडेरे बिलाल सरकी जी वंकार भरण लॻी पुलिस चौकीदार अजमल जे कतल खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई केस बि दाख़िल करे छॾियो मक़तूल जे वारे
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
5: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
5: सुनते रहो GAFM 90.4।
7: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
8: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार
8: जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
8: जी हा 2315525786
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: It's 9:15 AM.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GA 90.3

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: ये दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाई सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।